रे प्रमुख जी तमने मूलवू शू कही रे। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय।

स्वामीनारायण भगवान ने जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने जय गुणातीतान स्वामी महाराज ने जय भगत जी महाराज ने जय शास्त्री महाराज

ऐश्वर्यमुक्तो लये शोभे अक्षरसाथ सुंदर छवि लावण्य तेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालु ने नित्य नमो।

छत्र चामर शीर ऊपर शोभे, हारे आगे अगणित भाजा वागे। हे महाराज घोड़ा पर विराजमान हो, माणिक चौक में मलपतारे उड़े छे बिल गुलाल, वाजते गाजते महाराज ने उभा नगरवासी प्राणवारे। महाराज ने स्नान करवा माटे जवानो रूट रस्तो पण एक छे अने समय पण निश्चित छे। जे समये महाराज सवारे वेली सवारे निकले ने, ग्राम्यजनों पोताना घर धंधा काम बधु छोड़ी अने अगाशीए अटारीए पोताना घरना आंगणे आवीने उभा रहे अने महाराजना दर्शन करे। आवी रीते वाजते गाजते महाराज खेला नदीनी अंदर स्नान करवा माटे जाए, अने खेला नदीनी अंदर महाराज स्नान करवा माटे जाए त्यारे आपणे दररोज एक स्मृति करीए छीए ने।

महाराजनी जय, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, दिल्ली अक्षरधाम महोत्सवनी जय जय जय। सर्वप्रथम अपने सौ हाथ जोड़ी अने

ॐ श्री भगवते स्वामीनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री गुणादितानन्दस्वामी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री भगज्जी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री शास्त्रीजी महाराजाय नमो नमः। ॐ श्री योगीजी महाराजाय नमो नमः।